ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।

0: हां जी मेरे गुरु जी।
1: नदी कोई ज्यादा दूर नहीं सी। वो किले तो निकले, नदी दे लागे गए, प्याला भरिया, वापस आ गए ते गुरु साहब नू पेश कीता। पीण दी था गुरु साहब ने उनू किया, हुण जाओ ते पानी दोबारा नदी विच पा दियो। वो हैरान हो गए।
0: वापस मतलब? अच्छा जी, सत बचन मेरे गुरु।
1: उन्हें गुरु दा हुकम मन्या अते वापस नदी दे कंडे चले गए। सारा पानी प्याले विचो नदी विच पा दिता अते दोबारा अपने गुरु कोल चले गए। ते गुरु जी ने गौ पुछया, जदो तुसी प्याला पहला भरिया सी तां कि तुहानू नदी दे आकार विच कोई फर्क लग्या सी? कि नदी दा आकार घट गया सी?
0: नदी विच ते बहुत पानी है। नहीं, मैनू ते कोई फर्क महसूस नहीं होया।
1: तां गुरु जी ने पुछया, जदो तुसी ओ प्याला दोबारा नदी विच पा दिता तां कि तुहानू आकार विच वट्टी लगी?
0: प्याले दा ते नदी नाल कोई तोल ही नहीं, उस नाल कोई फर्क नहीं पिया।
1: गुरु साहिब जी ने दसिया, जो गुरु घर की शक्ति है उस सदा ही नदी वांग वगदी रहती है। गुरु की नदी हमेशा ही भरी रहती है, ना वो कटाई जा सकती है ना वधाई जा सकती है। सब नूं यह सोझी आउण लगी कि गुरु साहिब जी ने उन्होंने यह काम करन लई क्यों किया सी। ए अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करन लई दिता गया एक उदाहरण सी। गुरु जी अगे सिक्ख्या देंदे रहे, तुहानू अपने नेक कम्मा करके अते सेवा करके एक छोटे जिहे प्याले दी प्राप्ति हुई है, पर उस छोटे जिही कमाई नाल तुसी ये सोचिया कि तुसी एक वड्डा कार करोगे। तां गुरु साहिब ने सारिआं नूं याद करवाया कि उह अपने आप नूं रिहा कराउण लई बहुत सारे कोतक रचा सकते सन। जो शक्ति तुहाडे कोल हुणे है गुरु घर तो ही प्राप्त हुई है। कि इस घर विच तुहाडे च इन्नी शक्ति नहीं है? अपने दिल नूं यह सवाल करो।
0: हाँ जी मेरे गुरु जी, मेरे कोल शेर विच तब्दील होने की शक्ति है ते मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं दिल्ली शहर नूं भी खत्म कर सकता हाँ। पर तुसी तुहाडे कोल मेरे नालों किते वध बेअंत शक्तियां हन अते तुसी इस सब का कदे भी अंत कर सकते सी जिवें तुहानू पौंदा।
1: गुरु जी ने कहा, तुहानू सदा ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करन लई हुकम लेना चाहिदा है अते असी तुहानू यह हुक्म नहीं दिता है। तां करके हुण तुहानू गुरु घर दे हुक्म तो बाहर जाण दा नतीजा भोगना पैणा है।
0: मैं समझ गया हाँ, मैं हर प्रकार का नतीजा भोगण लई तैयार हाँ।
1: सारिआं नूं हुण गुरु साहिब जी दे संदेश का एहसास हो गया।
0: मैं भी बस ये कहना चाहुंदा हाँ कि अजिहा करन लई मैनू हुक्म होया सी। माता गंगा जी ने बाबा बुढ़ा जी राही ये हुक्म कल्या सी कि असी अपनी शक्ति नाल जो भी कर सकते हाँ वो करिए, जिस नाल आप जी जल्दी रिहा हो सको। बाबा जी ने साड़ी इस तरकीब की हिमायत की सी। फिर भी आप जी नू सब दा भला मालूम है अते मैं तुहाड़ी आग्या दा पूर्ण तौर ते पालन करांगा।
1: गुरु जी ने अकाल पुरख की आग्या नू मन्या ते आख्या, असी की कर सकते हाँ? असी माता जी अते बाबा जी दे वचन नहीं मोड़ सकते, तां तुहानू कोई सज़ा नहीं होवेगी, पर सानू एह जे काम नहीं करने चाहिए। तां गुरु साहिब जी ने सब नू संता दे मार्ग बारे समझाया। सब तो वड्डी शक्ति यह है कि शक्ति होंदे हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करना। ना जरिया जाण वाले नू असी चरना सीखना है। भगत उन्हां दे चरणा की धूल लोचते हैं जो सदा अकाल पुरख के पाने विच रहिंदा है।
0: हाँ जी मेरे गुरु जी, मैं आप जी दे जीवन दे मार्ग की पालना करांगा।
1: तां सी इलाही शक्ति बारे की सिख्या?
2: कि जेकर साडे कोल कोई ठोस वजह भी है तां भी सानू

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया हो रही वीडियो सब्सक्राइब करो।

0: गुरु जी नाल समा बिताना की हो जा लग्या?
1: अच्छा अच्छा ओ गुरु जी, हाँ हो चंगा से, बड़ा अनंत महसी थे, बड़ा ही चंगा से।
0: की उन्होंने सारी भेंटा स्वीकार की थी?
1: पेंटा केड़ी पेंटा? अच्छा अच्छा मिठाइयां, हाँ मिठाइयां उन्होंने रख लिया थे, क्या कि हाँ आशीर्वाद, हाँ कुछ दे कुछ बहुत आशीर्वाद। हाँ
2: इस दौरान दूजे दोस्त ने अपना समा गुरु जी दी अते उना दे संत रूपी भगतां दी संगत विच बिताया सी। हे गुरु जी, मैं तुहाडे तो कुर्बान जांदा हां, किरपा करके पेंटा स्वीकार करो, इस दी वरतों गरीबां दी सेवा लई करो। हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजिर हां, किरपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा दियो। हर रोज उदोवें काम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल उना दे वचन सुनन,
3: वाहे गुरु,
2: शब्द गाउन,
3: वाहे गुरु वाहे गुरु,
2: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउण लई चला जांदा। अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा, उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नू झूठ बोलिया अते उना दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उना दा पैसा जुआ खेडन, उस औरत नाल शराब अते सिगरेट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उना नीवे लोकां नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। एक कई दिनां तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
4: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बितौना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नू झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमां विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, तां फिर की फर्क पैंदा है कि असी चंगा करिए जां माड़ा? अपनी जिंदगी तां उवें है जिवें पहला सी।
2: दूजे दोस्त ने कहा,
3: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए, मैनु विश्वास है कि आपा नु सही उत्तर मिलेगा। कल नु मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है, आपा एथे ही मिलदे हां, आपा इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपा नु जवाब अपने आप मिल जाएगा।
4: इंज ही करदे हां, मैं देखण लई उत्सुक हां कि की होण वाला है।
3: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपा कल ही मिलांगे।
2: अगले दिन ओ गुरु जी कोल गया अते संगत दी निघी गोद विच बह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
4: कि तू इत्थे है दोस्त? नहीं।
2: उन्हें इंतजार कीता, होर इंतजार कीता, अते जदों ओ इंतजार कर कर के अक गया ता उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचनियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनू सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
4: सोना?
2: उसने होर खोदिया, उन्हें पुज्जा मिलिया। उसने सोचिया,
4: आज मेरा दिन चंगा है, हो सकता है इत्थे होर भी सोना होवे।
2: पर उस कुजे दे अंदर सिर्फ कौड़ा सी।
4: कौड़ा? ओहो, ये तो बड़ा निराशाजनक है, पर शुक्र है मैनू एक सोने दा टुकड़ा तां मिलिया, चलो यही सही है।
2: फिर थोड़ा समा इंतजार करन तो बाद दूजा दोस्त गुरु जी दी संगत तो वापस आया।
3: ओह,
2: ओ लंगड़ा रहा सी।
3: आए मेरा पैर।
4: की हो गया तैनू?
3: मैं गुरु जी दी संगत तो होके वापस पैदल चल के आ रहा सी अते मैं तिलक गया ते मेरा पैर एक वड्डी कंडेदार झाड़ी ते पै गया। ओ मेरे पैर दे विच डूंगा खुब गई, माड़ी किस्मत आ मेरी। ओए
2: ओह, दोवें ही बड़ी उलझन विच सन।
4: ऐस गल दी कोई समझ नहीं लग रही, असी उस ईश्वर तो पुछया कि साडे चंगे जां माड़े कर्मां नाल कोई फर्क पैंदा है, अते की ए उदा जवाब है, मैं बुरा कीता, मैनू सोना मिलिया, जद की तू चंगा कीता अते तैनू सट वज गई।
3: मैनू विश्वास है कि ईश्वर ने सही जवाब ही दिता होवेगा।
4: मैनू ए जवाब बिल्कुल भी समझ